किस्मत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है, मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है, मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है, दर्द देने के लिए सख्त में निहा बाकी। याद आए फुलाते फुलाते, बहुत याद आए, बहुत याद आए, बुलाते बुलाते बुलाते बुलाते।